0: ಫೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಘ ಸದೈ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್.
1: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं.
2: प्रिंसिपल डीबी थापा, लिटिल स्टार बोर्डिंग स्कूल परिवार, तिलोत्तमा 16 जुड़ा रूपन्देही. थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 98 570 26315.

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष जितेन्द्र बौडेल जितू, प्राचार्य किरण सागर गेवाली तथा लिटिल प्याराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, प्राचार्य दीपक खनाल तथा श्री कुंवरवर्ती इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: खेल खेलाऊ स्वस्थ बनाऊ
2: अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने तथा नवजीवन क्लब परिवार सिलोतमा 10 नम्बर रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा सम्पूर्ण संचालक समिति, ल्याब प्रशासन, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेशनल प्याथ ल्याब परिवार बुटवल।

0: देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष लीला पन्त तथा नारी जागृति महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड केउलानी रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्राचार्य कमल कोइराला तथा अध्यक्ष कुम बहादुर बयम्बु नमूना बोर्डिंग स्कूल किलोकमा 10 बेमरी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्लम्बर सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप सधैंको भरोसा आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुम्बिनी बिजनेस प्राली योगीकुटी बुटवल साथै हामी कहाँ प्लम्बर ब्रांड का सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप पाउनु का साथै स्टील टंकी प्लास्टिक टंकी र धारा सेट उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9857042583 र 9857042483।
2: हरेक स्पेंडिंग मा कलेक्टिंग पॉइंट्स

0: शांति समृद्धि र रूपांतरण का लागि रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज
1: बर्जर घर रंग रौनक घर र मन दुवै रंगीन बनाउने आकर्षक अफर आजै बर्जर पेन्ट्स को खरीदमा पाउनुहोस् मोटरसाइकल फ्रिज र मोबाइल फोन जित्ने मौका साथै स्योर सर्टमा पाउनुहोस् 100 स्क्वायर फिट को सेल्फ इल्युजन डिजाइन पनि शर्तहरू लागू हुने छन्
2: गर्ने एउटा थाक्ने जहान दिनभरि तिमीले के गरेर बस्छौ ह तीन दिन भयो कपडा धुन दिएको आज पनि त्यसै असरल छन्
3: मैले काम गरेको तपाईले कहिले पो देख्नु भएको छ र
4: के को छलफल हो दाई बाबुजू दुवै जना थकित पनि देखिनुहुन्छ
3: हेर्नुस् न बाबु हुन त घरका कुरा नभने पनि हुने हो बिहान उठेदेखि घरको सरसफाई चिया नास्ता खाना बच्चालाई स्कूल दाईलाई अफिस भाँडा भान्सा करेसा बारीको काम एक मिनट फुर्सद छैन तर दाईले मेरो कामै देख्नुहुन्न
4: हुन त हो घरका काम कति हुन्छन् कति गणना गरी साध्य छैन अफिसको एकरो काम भन्दा त घरका काम धेरै गाह्रो छ आफूले गर्न परेको थाहा हुन्छ नगरेकालाई कसरी थाहा होस्
2: ओहो भाइ आज तिमीले साँच्चै मेरो आँखा खोलिदियौ घरमा कम काम हुन्छ म बल्ल बुझे भाइ
5: एक अर्काको कामको सम्मान गरौ समाज परिवर्तनमा अग्रसर बनौ
6: सूचना निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सम्बन्धी सूचना
7: नवीन निशुल्क जलन सर्जरी तथा परामर्श शिविर सम्बन्धी सूचना
6: लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नबिल बैंक र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा नबिल निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको छ
7: मिति 2083 वैशाख 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म
6: स्थान राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ
7: उपचार हुने मुख्य समस्याहरू
6: आगोले पोलेर शरीरको भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने
7: पोलेका कारण हात खुट्टाका औलाहरू टाँसिएको
6: पोलेर टाउको कपाल गुमेको
7: एसिड आक्रमण वा विस्फोटनमा परि जलन भएका
6: जन्मजात हात खुट्टामा 5 भन्दा बढी औला भएका वा पैताला भित्र फर्किएका
7: विशेषता
6: वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जनद्वारा पूर्ण रूपमा निशुल्क शल्यक्रिया तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ
7: थप जानकारी वा नाम दर्ताका लागि अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला
6: विस्तृत जानकारीका लागि 9853500076 अथवा 9841553555
8: अब सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ सेवाहरूको लागि सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी
9: हाम्रा सेवाहरू
8: आधुनिक भवनको नक्सा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने
9: बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लागि घर जग्गा तथा सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्ने
8: विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको लागि भित्र मूल्याङ्कन गर्ने
9: घरेलु कार्यालयको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने
8: सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी रेडियो लुम्बिनीको भवन मणिग्राम रूपन्देही
10: शाखा कार्यालय तिलोतमा नगरपालिकाको अगाडि
11: सम्पर्क 9570-24-344 9570-35-227 र 9570-73-220
12: हार्दिक निमन्त्रणा हाम्रो यस संस्था अनाथ तथा असहाय महिला कल्याण समाज रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रममा आश्रित सुरेन्द्र बानियाले महाभारत कुन्ती पुत्र राधिया पण्डको जीवनी कवितालाई सत्सङ्ग प्रवचन गर्ने कार्यक्रममा सम्पूर्ण आमा समूहहरू कर्मचारीहरू संघ संस्थाहरू सम्पूर्ण धर्म प्रेमी बुवामा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू उपस्थित भएर प्रवचन श्रवण गरी पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ
13: मिति 2083 जेठ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म समय 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म स्थान आश्रम प्रांगण अध्यक्ष मैनादेवी भण्डारी
14: बुटोल भैरहवाको बीच मणिग्राममा स्तरीय क्लिनिक नीता पोली क्लिनिक प्रणाली
15: हाम्रा सेवाहरू
14: जनरल फिजिसियन
15: स्त्री तथा प्रसूति
14: बाल रोग
15: छाला तथा यौन रोग
14: हाड जोड्ने नसा तथा बाथ रोग
15: टाउको तथा मनोरोग
14: नाक कान घाँटी
15: जनरल सर्जरी
14: भिडियो एक्सरे
15: डिजिटल एक्सरे
14: ईसीजी
15: डेन्टल तथा प्याथोलोजी
14: फिजियोथेरापी
15: तथा फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध छन्
16: किशोर किशोरी युवाहरू र 15 देखि 49 वर्ष महिलाहरूलाई अस्थायी परिवार योजनाको साधन लामो समयको साधनमा कपटी र इम्प्लान्ट सेवाहरू उपलब्ध रहेको छ।
17: गुणस्तरीय सेवामा विगत लामो समयदेखि प्रतिबद्ध
18: नीता पोलिक्लिनिक प्राली तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही रेडियो लुम्बिनीको ठ्याक्कै अगाडि। फोन नम्बर 071-562-832 मोबाइल
19: 98-570-21-835।
20: नमस्कार हो नमस्कार नाई ई बुढ़ौती में बूढ़ा बूढ़ी का बात कही जाता अका होई डॉक्टर नी बहनी बड़की पतोहिया दुई जीव के भाईल भाई औकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा आहा ई होखे ना तरीका सास ससुर के हाँ तब का पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई होई जाले ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कैल जाला तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
21: देखा पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गई और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत।
20: ठीक बात सुनल जाए रेडियो में लगातार बाजत बा।
22: गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा।
23: गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा।
20: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
21: सब मिल के खियावल जाए।
20: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए। बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी अंडा मछरी गोश हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
21: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे उसे एक जवा बेची दिहल जाए और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज उसे 2 जवा बेची देवल जाए।
20: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही। खास करके हाथ सफा रखा खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर भिका के पिए के चाही बुझलू ने।
21: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
24: को पर्व
25: एसआर इप्सन क्यानन ब्रान्डको 5 नम्बर प्रदेशको रिजनल अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर
24: इपिएसटी ग्रुप कम्प्युटर सर्भिस सेन्टर
25: कृषि विकास बैङ्कको गल्ली भिलनचोकदेखि 50 मिटर पूर्व आफ्नै भवनमा।
24: फोन नम्बर 071-542-6999 551-6999।
26: उन्नतिका लागि शान्ति
27: एकताका लागि शान्ति
16: शान्ति समृद्धि र रूपान्तरणका लागि रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज।

0: फोन पॉइंट संग सदै रिवॉर्डेड
1: नया वर्षा को सुबह का मना
2: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हीरालाल खनाल, व्यवस्थापक दिल्लीराज शर्मा, मिलीजुली बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, तिलोत्तमा 8 सूर्यपुरा।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे मिलीचुली क्लब शंकर नगर तिलोत्तमा एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष लेखनाथ पराजुली, मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण सर्जिकल व्यवसायी औषधी विक्रेता आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रोपराइटर सुरेश कुमार न्यौपाने, मेडिकेयर सर्जिकल एण्ड केमिकल।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। मणिग्राम जर्नल स्टोर्स मणिग्राम चोक रूपन्देही दैनिक उपभोग्य सामग्री को थोक तथा फुटकर विक्रेता हजुर इस मणिग्राम जर्नल स्टोर्स में विवाह व्रतबन्ध र पार्टी लगायत का शुभ कार्य का लागि आवश्यक पर्ने संपूर्ण घरायसी सामग्री सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। सीधा संपर्क 071-562-477 र 98-470-59-25।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रोपराइटर कृष्ण रसाईली मनकामना सुनसादी पसल सिलोतमा एक ड्राइवर टोल चोक रूपन्दे हामी कहाँ आधुनिक तथा जुनसुकै डिजाइन में सुन र चाँदी का गहना ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। साथै विवाह लगायत का जुनसुकै शुभ कार्य सुन लगायत का गर गहना का लागि सधैं सम्झिनु होला। हाई मनकामना सुन स्वादी पसल तुरुतमा एक ड्राइभर टुल्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर कृष्ण प्रसाद पाण्डे, माछा पुछरे ट्रेडर्स परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम वडा कार्यालय जाने माछा पुछरे पथ, सम्पर्क नम्बर 98570042306। साथै हामी कहाँ दैनिक उपभोगका सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै सबै खाले खाद्यान्न सामग्री थोक तथा फुटकर मूल्यमा बेचबिखन गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बाल शिक्षा में लगानी ल्याउँछ सुन्दर बिहानी अध्यक्ष गोपाल टंडन प्राचार्य विष्णु प्रसाद ढकाल तथा लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूल तिलोत्तमा 13 मधौलिया रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेम जीएम, विद्यालय संचालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र थापा मगर, प्राचार्य लक्ष्मण अर्याल तथा सेन्ट जोसेफ इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा सात भलवारी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: संस्कृत भाषा हाम्रो पहिचान, धर्म संस्कृति जोगाउन थालौं अभियान। प्राचार्य बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष गोपाल भट्टराई तथा सरस्वती संस्कृत विद्यापीठ क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजु भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सचिव अरविंद पांडे, अध्यक्ष संतोष कुमार शेरचन्न तथा श्री सिद्ध बाबा मंदिर विकास समिति परिवार तीनाउतीन दोभान।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीजनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: संचालक गोकर्ण खड्का, आरबी इटा उद्योग। हजुर, आरबी इटा उद्योगद्वारा निर्माण गरिएका नम्बर वन ब्रान्डका गुणस्तरीय इटाहरू सदैव प्रयोग गरौं। सिधा सम्पर्क 9857778373।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहनु भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष रोस्तम कडेल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा, तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।
2: पिंटो शान्तिको मुहान लुम्बिनी, शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।
3: साया, मलाई तिमी किन माया गर्छौ?
4: के

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष क्षेमेन्द्र राणा, श्री राम जानकी शिव मंदिर परिवार, तिलोत्तमा 9 कुटी, मंगलापुर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष गोपाल रामदाम, रूपन्देही सुनचादी व्यवसायी संघ परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीजनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गुणस्तरीय बिजुली पानीको सुलभ समाधान प्रोपराइटर दितेश पाण्डे एपी ट्रेडिङ परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोकदेखि 100 मिटर पूर्व। साथै हामी कहाँ बिजुली पानी प्लम्बिङका उच्च स्तरीय सामान तथा सेवा सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98572482848।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: भारती मार्बल्स परिवार तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देही साथै हामी कहाँ टायल ग्रेनाइट पाइप फिटिङ बेसिन धारा आइटम एवं कम्बोर्ड लगायत का सामग्री सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9857725255।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीनानाथ ढकाल, आनन्दवन मधुबन सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा 12 नम्बर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त कृषक दाजुभाई, कुलारा समिति का पदाधिकारी एवं सदस्य, मौजा मुख्तियार, कर्मचारी लगायत संपूर्ण में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दधिराम गौतम, 36 मौजा सामुदायिक सिंचाई परिवार, किलोतमा एक, रूपन्देह।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य शंकर दत्त उपाध्याय, श्री टिकुलीगढ़ माध्यमिक विद्यालय, तिलोत्तमा 14, टिकुलीगढ़, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सहकारीमा खाता खोलौं, बचत गर्ने बानी बसालौं। अध्यक्ष डीडी थापा, व्यवस्थापक लक्ष्मण काउसा तथा तुंगा आस्था विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओम सतिया एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष कृष्ण रसाईले तिलोत्तमा सुनसादी व्यवसायी संघ तिलोत्तमा एक ड्राइवर टूल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण सियर सदस्य संचालक समिति सलाहकार लेखा समिति कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राजेन्द्र कुंवर टाकुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार सिलोतमा एक ड्राइवर टोल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: इंजीनियर दुजेन्द्र कुमार बस्नेत सनराइज इंजीनियरिंग कंसल्टेन्सी परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही रेडियो लुमिनी भएको भवनमा।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सचिव अरविंद पांडे, अध्यक्ष संतोष कुमार शेरचन्द तथा श्री सिद्ध बाबा मंदिर विकास समिति परिवार तीनाउतीन

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेम जीएम, विद्यालय संचालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र थापा मगर, प्राचार्य लक्ष्मण अर्याल तथा सेन्ट जोसेफ इंग्लिश स्कूल परिवार चिलोतमा साथ भलवारी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्कृत भाषा हाम्रो पहिचान, धर्म संस्कृति जोगाउन थालौ अभियान। प्राचार्य बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष गोपाल भट्टराई तथा सरस्वती संस्कृत विद्यापीठ क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मड़गिराम।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष शकुन्तला सुनारी मगर, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, करैया मंगलापुर परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोपराइटर प्रकाश कार्की, साना किसान दुग्ध बिक्री केन्द्र तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चौक रूपन्दे। साथ ही हामी कहाँ शुद्ध ताजा पनीर, घिउ, दूध, दही, नौनी एवं कुल्फी का विभिन्न आइटमहरू सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98672 28 157।
2: हामीले खुशी बनाउँदै नयाँ वर्षलाई।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष गोपाल रामदाम, रूपन्देही सुनचाँदी व्यवसायी संघ परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण रिसनमा आबद्ध विद्यालय विद्यार्थी पदाधिकारी बुद्धिजीवी एवं सम्पूर्ण जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष फूलबहादुर सराङको टिपावन, रूपन्देही एकीकृत विद्यालय संगठन परिवार, रिसन रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक गोकर्ण खड्का आरबी ईटा उद्योग हजुर आरबी ईटा उद्योग द्वारा निर्माण गरिएका नम्बर वन ब्रांड का गुणस्तरीय ईटाहरू सदैव प्रयोग गरौं। सीधा सम्पर्क 9857077873।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहनु भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष रुस्तम कडेल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा, तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त मन्दिर व्यवस्थापन समिति, धर्मानुरागी महानुभाव, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष हेमेन्द्र राणा, श्री राम जानकी शिव मन्दिर परिवार, तिलोत्तमा 9 कुटी, मंगलापुर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सुख का गहना दुख का खजाना यसपालीको नयाँ वर्ष राधाकृष्ण सुनचाँदी पसलमा प्रोप्राइटर पुरुषोत्तम सुनार श्री राधाकृष्ण सुनचाँदी पसल मणिग्राम चोकदेखि 50 मीटर पश्चिम। हामी कहाँ नयाँ तथा आकर्षक डिजाइन का गर गहना पाउनुका साथै पुरानासँग नयाँ साटफेर पनि गरिन्छ। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल 9862750556 र 9843776899।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: पूर्व राइटर जवाहरलाल न्यौपाने पूजा मेडिकल हल तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही सम्पर्क नम्बर 98570 30

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष अर्चित श्रेष्ठ, प्राचार्य वेदनारायण भट्टराई तथा श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय चिलोत्तमा 15 कोटिहबा रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि।

0: श्री शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्यारामाउन्ट बोर्डिङ हाई स्कूल तिलोत्तमा एक नयाँ मिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पामीर इंटरनेशनल एकेडेमी परिवार तिलोत्तमा 2 जानकी नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नंबर 98570 59848।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन तिलोत्तमा में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व तथा देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपक गौतम तथा प्याप्सन तिलोत्तमा परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन रूपन्देही में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक संस्था, बौद्धिक वर्ग एवं शैक्षिक व्यक्तित्वहरूमा सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य दिनेश भूषाल एवं प्राध्यापक सुमन भूषाल अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुथुल 8 सुखानगर रूपन्देही परिवार
2: लुम्बिनी शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक रामप्रसाद ढकाल, नेता पोलिक्लिनिक प्राली परिवार, तिलोत्तमा 5 मडिग्राम, रेडियो लुमिनी को ठैक्कै अगाड़ी। संपर्क नंबर 071 562 832।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दक्ष अनुभवी र अब्बल शिक्षण सिकाई को अर्को नाम न्यू लाइफ मावी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी परिवार तिलोत्तमा एक शंकरनगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल 98570 34520।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: न्यू इन्भायरमेन्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तुलुकमा 5 मणिग्राम रूपन्देही मोबाइल 98570 26294।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नवज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98470

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: खेल खेलाउ स्वस्थ बनाऊ।
2: अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने तथा नवजीवन क्लब परिवार सिलोतमा 10 नम्बर रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा सम्पूर्ण संचालक समिति, ल्याब प्रशासन, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेशनल प्याथ ल्याब परिवार बुटवल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य संचालक समिति सलाहकार लेखा समिति कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय स्तुति कामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लीला पन्त तथा नारी जागृति महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड केउलानी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य कमल कोइराला तथा अध्यक्ष कुम बहादुर बयम्बु, नमूना बोर्डिंग स्कूल सिलुकमा 10 बेमरी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्लम्बर सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप सधैंको भरोसा आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुमिनी बिजनेस प्राली योगीकुटी बुटवल साथै हामी कहाँ प्लम्बर ब्रांड का सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप पाउनु का साथै स्टील टंकी प्लास्टिक टंकी र धारा सेट उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 42583 र 98570 42483।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: चेयरमैन बसंत रोका छेत्री, माउंट एवरेस्ट कथा मिल्स, माउंट एवरेस्ट एग रोड तथा माउंट रोजिंग टॉप एंड टाइम किलोतमा 16 पर्सहवा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण सियर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हीरालाल खनाल, व्यवस्थापक दिल्लीराज शर्मा, मिलीजुली बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, तिलोत्तमा 8 सूर्यपुरा, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथ ही देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ईश्वर पांडे मिलीचुली क्लब शंकर नगर तिलोत्तमा एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष लेखनाथ पराजुली, मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण सर्जिकल व्यवसायी औषधि विक्रेता आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रोपराइटर सुरेश कुमार न्यौपाने, मेडिकेयर सर्जिकल एण्ड केमिकल, बुटोल छ मैत्रीपथ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर कृष्ण प्रसाद पाण्डे, माछा पुछरे ट्रेडर्स परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम वडा कार्यालय जाने माछा पुछरे पथ, सम्पर्क नम्बर 98570 42306। साथै हामी कहाँ दैनिक उपभोगका सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै सबै खाले खाद्यान्न सामग्री थोक तथा फुटकर मूल्यमा बेचबिखन गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बाल शिक्षा में लगानी ल्याउँछ सुन्दर बिहानी। अध्यक्ष गोपाल टंडन, प्राचार्य विष्णु प्रसाद ढकाल तथा लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूल तिलोत्तमा 13 मधौलिया रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रिंसिपल डीबी थापा, लिटिल स्टार बोर्डिंग स्कूल परिवार, तिलोत्तमा 16 जुड़ा रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98570 26315।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष जितेन्द्र बौडेल जितू, प्राचार्य किरण सागर गेवाली तथा लिटिल प्याराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार तेलोतमा सात भलबारी रूपन्दे। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 35824।

बीमा गरौं जीवन सबल बनाऊ। नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण बीमाकर्ता अधिकर्ता बीमित परिवार तथा संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। दुर्गा प्रसाद पांडे एजेंसी मैनेजर तथा LIC नेपाल परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, प्राचार्य दीपक खनाल तथा श्री कुंवरवर्ती इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा सम्पूर्ण उपभोक्ता सल्लाहकार संचालक समिति कर्मचारी लगायत देश विदेशमा रहनुहुने समस्त आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: अध्यक्ष यज्ञ गैरे तथा करैया मकरहर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था परिवार तिलोत्तमा 8-4 नम्बर रूपन्दे
2: शांति को आवाज रेडियो लुम्बिनी।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त इस आमा समूह में आबद्ध महिला दीदी बहनी शुभेच्छुक वड़ावासी एवं देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपा पांडे तथा कैलाश आमा समूह तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही परिवार।

0: को शुभ कामना।
1: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्राचार्य दिलबहादुर थापा तथा अध्यक्ष सूरज थापा, श्री ज्योति आधारभूत विद्यालय, तिलोत्तमा 8, ज्योति नगर, 4 नम्बर चोक, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष धनेन्द्र पौडेल, झरना स्पोर्ट्स क्लब परिवार, तिलोत्तमा छ कुञ्जलापुर रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर लालमणि भट्टराई, झरना एण्ड तुलसा इन्टरप्राइजेस, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही, गिरवाण स्कूल को ठ्याक्कै अगाडि। साथै हामी कहाँ ग्यास सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री पाउनुका साथै किचन का लागि आवश्यक सबै किराना सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामी कहाँ होम डेलिभरी को पनि व्यवस्था छ है। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल 9857035492 र 9847415538।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सरपराइटर मनोज सेनसुरी, जय सन्तोषीमा ज्वेलर्स परिवार, सिलुक्तमा 5 मणिग्राम चौक रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहन्भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। बहुदलीय बहुजातीय समाजवाद को संरक्षण गरौं, धर्मनिरपेक्षता र संहिता को पूर्ण कार्यान्वयन गरौं। अध्यक्ष झमबहादुर गुरुङ, राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कसजू, आचार्य गोपाल प्रसाद आचार्य तथा होराइजन जीडीएस तिलोत्तमा एक ड्राइभर टुल रूपन्दे।
2: शांति को आवाज रेडियो।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: ज्ञानगंगा पाठशाला परिवार तिलोत्तमा चौर शीतल कुंज रूपन्देही संपर्क नंबर 98573304।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य मृगेन्द्र प्रसाद रिजाल, श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय परिवार, तिलोत्तमा 9 केउलानी, रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 67029।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक समीर रिजाल तथा किशन केसी फेमस आल्मोनियम एण्ड स्टील इंजीनियरिंग ग्लास हाउस परिवार तिलोत्तमा 9 शंकरपुर रूपन्दे साथ ही हामी कहाँ आल्मोनियम को चार ढोका अफिस डेकोरेशन पार्टेशन कर्टेन वाल तथा सीसा टफन ग्लास एवं स्टील संबंधी संपूर्ण काम सुपथ मूल्य में गरिन्छ।
2: साथ ही यहाँ यूपीबीसी का झार ढोका संबंधी काम गरिन्छ।
1: थप जानकारी का लागि संपर्क 98570152 और 98570427708।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डन मोडल एकेडेमी परिवार तीन पांच छ नयामिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष बाबुराम देवकोटा ध्रुवतारा युवा क्लब तिलोत्तमा 1, 5 र 9 को संगम प्रेमनगर रूपन्देही समाज सेवामा सदैव अग्रणी ध्रुवतारा युवा क्लब।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्मा तथा धौलागिरी मल्टी स्पेशलिटी डेन्टल क्लिनिक परिवार तिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्दे साथै विगत 15 वर्षदेखि मणिग्राम क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट सेवा दिन सफल वरिष्ठ डेन्टल सर्जन डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्माद्वारा दाँत मुख र गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार गरिन्छ। साथै हामी कहाँ इम्प्लान्ट एवं अर्थोडेन्टिक सेवा पनि उपलब्ध छ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मैनेजिंग डाइरेक्टर प्रकाश थापा तथा देव पाइप इंडस्ट्रीज प्राली तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्थापक प्राचार्य खेमेन्द्र राणा, क्रिस्टल नलेज एकेडेमी परिवार, तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देह।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: डाक्टर शेखर पोखरेल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट क्रिम्सन अस्पताल परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: यस क्षेत्रकै सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक संस्था ब्रिटिश ग्रामर स्कूल रूपन्देही।
2: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेय, प्राचार्य डोलराज पाण्डेय तथा विश्व शांति सामुदायिक आधारभूत विद्यालय परिवार तिलोत्तमा नौ नन्दनमन रूपन्देही। सम्पर्क नम्बर 9847309634।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष होमनाथ पराजुली तथा रूपन्देही विद्युतीय व्यवसायी संघ तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजु भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्य, सचिव छविन्द्र गिरी तथा श्री बासघारी देवी शक्तिपीठ तिलोकमा छ पश्चिम पहुनी।

0: आग लागि हुन नदिन सधैँ चनाखो बनाऊ। खाना पकाइसकेपछि आगो ग्यास चुलो स्टोभ वा हिटर निभाऊ। सिलिन्डरको रेगुलेटर पाइप वा चुलोबाट ग्यास लिक भए नभएको यकिन गरौं। ग्यासको गन्ध आए व्यवस्था नगरौं। सलाई लाइटर बाल बालिकाले भेट्याउने ठाउँमा नराखौं। दाउरा बालेर खाना पकाइसकेपछि पानी छ्यापेर आगो निभाऊ। चुरोट तमाखु चिलिम सुल्पा नखाऊ। खाएमा आगो राम्ररी निभाऊ। बिजुलीका तार प्लग स्विच वा वायरिङ ठिक अवस्थामा भए नभएको जाँच गरौं। घर बस्ती नजिकै पोखरी ट्याङ्की वा अन्य कुनै तरिकाले पानीको जोहो गरिराखौं। आग लागिजन्य विपदबाट बस्न चनाखो बनाऊ। हावाहुरीबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्व तयारी एवं सतर्कता अपनाऊ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालय राप्ती उपत्यका दिउखुरी नेपाल।
1: डेंगू से बचे की खंती मच्छर के काटे से बचा भी सर्वोत्तम उपाय हुए। पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहना जाए। सूते के समय मच्छर से बचे खंती मच्छरदानी के प्रयोग करा जाए। घर के आसपास और खेत बाड़ी में काम करे के समय मच्छर के काटे से बचा जाए। झाल और दरवाजा में जाली लगाई के बंद करा जाए। मच्छर उत्पन्न न हुए देख लिए घर के आसपास सफा रखा जाए और पानी जमे के ना देवा जाए। अचानक बुखार और ज्यादा सरदर्द भय में तुरंत नजीक के स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में जचावा जाए।
2: अनुरोध आग लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय राप्ती उपत्यका देवखुरी नेपाल।
3: हार्दिक निमन्त्रणा। हाम्रो यस संस्था अनाथ तथा असहाय महिला कल्याण समाज रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रममा आश्रित सुरेन्द्र बानियाले महाभारत कुन्ती पुत्र राधिया पण्डको जीवनी कवितालाई सत्सङ प्रवचन गर्ने कार्यक्रममा सम्पूर्ण आमा समूहहरू, कर्मचारीहरू, संघ संस्थाहरू, सम्पूर्ण धर्मप्रेमी बुवामा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू उपस्थित भएर प्रवचन श्रवण गरी पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
4: मिति 2083 जेठ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म। समय 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म। स्थान आश्रम प्रांगण। अध्यक्ष मैनादेवी भण्डारी।
5: कति धेरै भिड हो, मलाई यो सेतो छडी समातेर उभिन पनि गाह्रो भइसक्यो। ल मलाई कसले छुँदैछ यताउता, आँखा भने देख्दिन, कसलाई आरोप लगाउनु र? अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर हेप्न पाइन्छ? लौ न सहयोग गर्नुहोस्।
6: ओए बहिनीलाई के गरेको हो, त मान्छे नै रहेनछस्।
7: सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिउँ। अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध हामी सबै एक हौ।
8: डिसेबिलिटी राइट्स फण्डको आर्थिक सहयोगमा नेत्रहीन महिला संघ नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
9: नव वर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
10: स्कूल तथा क्याम्पस ड्रेसको विश्वसनीय पसल उपहारमा नयाँ वर्षको उपहार प्रोप्राइटर पारस पौडेल तथा दामोदर पौडेल उपहार साडी सेन्टर तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही। साथै हामी कहाँ विभिन्न प्रकारका कुर्ता सलवार सटिङ सुटिङ स्कूल बोर्डिङ र क्याम्पसका ड्रेसहरू तथा स्कूल र कलेजका ब्यागहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98470077118।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेम जीएम, विद्यालय संचालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र थापा मगर, प्राचार्य लक्ष्मण अर्याल तथा सेन्ट जोसेफ इंग्लिश स्कूल परिवार, तिलोत्तमा साथ भलवारी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्कृत भाषा हाम्रो पहिचान, धर्म संस्कृति जोगाउन थालौं अभियान। प्राचार्य बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष गोपाल भट्टराई तथा सरस्वती संस्कृत विद्यापीठ क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मडगिराम रूप।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष शकुन्तला सुनारी मगर, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, करैया मंगलापुर परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर प्रकाश कार्की, साना किसान दुग्ध बिक्री केन्द्र तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोक रूपन्दे। साथ ही हामी कहाँ शुद्ध ताजा पनीर, घिउ, दूध, दही, नौनी एवं कुल्फी का विभिन्न आइटमहरू सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9872 28 157।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य शंकर दत्त उपाध्याय, श्री टिकुलीगढ़ माध्यमिक विद्यालय, चिलोत्तमा 14, टिकुलीगढ़, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सहकारीमा खाता खोलौं, बचत गर्ने बानी बसालौं। अध्यक्ष डीबी थापा, व्यवस्थापक लक्ष्मण काउसा तथा तुंगा आस्था विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओम सतिया एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष कृष्ण रसाईले तिलोत्तमा सुनसादी व्यवसायी संघ तिलोत्तमा एक ड्राइवर टूल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य संचालक समिति सलाहकार लेखा समिति कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राजेन्द्र कुवर टाकुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार फिलोतमा एक ड्राइवर टोल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: इंजीनियर दुजेन्द्र कुमार बस्नेत सनराइज इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्सी परिवार तुलतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही रेडियो लुमिनी भएको भवनमा।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी महानुभाव शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सचिव अरविंद पांडे, अध्यक्ष संतोष कुमार शेरचन्न तथा श्री सिद्ध बाबा मंदिर विकास समिति परिवार तीनाउतीन दोभान।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर सूरज लोहागुन, श्री कैश आभूषण सुन चाँदी पसल, तिलोत्तमा 5 प्रेम भवन सटर लाइन। हामी कहाँ सुन चाँदी का अत्याधुनिक डिजाइन का 24 क्यारेट का रेडीमेड गरगहना पाउनु का साथ ही अर्डर अनुसार का गरगहना सुपथ मूल्य में बनाइन्छ। सीधा सम्पर्क 98570 60790।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष अर्जुन बस्याल तथा पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्यारामाउंट बोर्डिंग हाई स्कूल तिलोत्तमा एक नया मिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पामीर इंटरनेशनल एकेडमी परिवार तिलोत्तमा 2 जानकी नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 9857 59848।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त आमा बुबा दाजुभाई एवं दीदी बहिनीहरुमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइन में सुन्दर चांदी का गहनाहरु ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। पालपाली सखी सुन चाँदी पसल तिलोत्तमा 5 मणिग्राम बजार प्रोप्राइटर सूरज सविता गहतराज। सम्पर्क नम्बर 0171 62 9 14 मोबाइल नम्बर 98470077 र 98470558627।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष राजेश कुमार कसौदन, महासचिव भूपराज अर्याल तथा पश्चिमांचल ट्यांकर व्यवसायी संघ परिवार, तिलोत्तमा साथ भलबारी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष गोपाल रामदाम, रूपन्देही सुनचाँदी व्यवसायी संघ परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण रिसन में आबद्ध विद्यालय विद्यार्थी पदाधिकारी बुद्धिजीवी एवं संपूर्ण जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष तुल बहादुर सरांगोटी पवन, रूपन्देही एकीकृत विद्यालय संगठन परिवार, रिसन रूपन्देही।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक गोकर्ण खड्का आरबी ईटा उद्योग हजुर आरबी ईटा उद्योग द्वारा निर्माण गरिएका नम्बर वन ब्रांड का गुणस्तरीय ईटाहरू सदैव प्रयोग गरौं। सीधा सम्पर्क 9857077873।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहनु भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष रुस्तम कडेल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा, तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।
1: विश्व शांति को मुहान लुम्बिनी, शांति को आवाज रेडियो लुम्बिनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष खेमेन्द्र राणा, श्री राम जानकी शिव मंदिर परिवार, तिलोत्तमा 9 कुटी, मंगलापुर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सुख का गहना दुख का खजाना यसपाली को नया वर्ष राधाकृष्ण सुनचादी पसलमा प्रोप्राइटर पुरुषोत्तम सुनार श्री राधाकृष्ण सुनचादी पसल मणिग्राम चोक देखि 50 मीटर पश्चिम हामी कहाँ नया तथा आकर्षक डिजाइन का गरगहना पाउनु का साथै पुराना सँग नया साटफेर पनि गरिन्छ। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल 98672 50556 र 98473 76899।

0: Marga Khanti OPC Cement, Desh Ko Cement.
1: Naya Barsa Ko Subha Ka Mana.
2: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: न्यू इन्भाइरोमेन्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तुलुतमा 5 मडिग्राम रूपन्देही, मोबाइल 98570 26294।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नवज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही। थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 98 4 70 26 8

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनु हुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: खेल खेलाउ स्वस्थ बनाऊ।
2: अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने तथा नवजीवन क्लब परिवार सिलोकमा 10 नम्बर रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा सम्पूर्ण संचालक समिति, ल्याब प्रशासन, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेशनल प्याथ ल्याब परिवार बुटवल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य संचालक समिति सलाहकार लेखा समिति कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लीला पंत तथा नारी जागृति महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड केउलानी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य कमल कोइराला तथा अध्यक्ष कुम बहादुर बयम्बु नमूना बोर्डिंग स्कूल किलोकमा 10 बेमरी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्लम्बर सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप सधैंको भरोसा आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुमिनी बिजनेस प्राली योगीकुटी बुटवल साथै हामी कहाँ प्लम्बर ब्रांड का सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप पाउनु का साथै स्टील टंकी प्लास्टिक टंकी र धारा सेट उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 42583 र 98570 42483।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन तिलोत्तमा में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व तथा देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दीपक गौतम तथा प्याप्सन तिलोत्तमा परिवार।
2: टाटा पेन्ट्स हामी रंगाउँछौ नेपाललाई। द ब्ल्याक हर्स बाजेदेखि नातिसम्म 1914 अहिलेसम्म। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जहाँ नेपाली त्यही सिटी एक्सप्रेस। पेन जादु ऑयल

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन रूपन्देही में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक संस्था, बौद्धिक वर्ग एवं शैक्षिक व्यक्तित्व में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपक खनाल, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन परिवार रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य दिनेश भूषाल एवं प्राध्यापक सुमन भूषाल अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुछुल 8 सुखानगर रूपन्देही परिवार

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक रामप्रसाद ढकाल, नेता पोलिक्लिनिक प्राली परिवार, तिलोत्तमा 5 मडिग्राम, रेडियो लुमिनी को ठैक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 0175268332।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दक्ष अनुभवी र अब्बल शिक्षण सिकाई को अर्को नाम न्यू लाइफ मावि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी परिवार तिलोत्तमा एक शंकर नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल 98570 34520।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त इस आमा समूह में आबद्ध महिला दीदी बहनी शुभेच्छुक ओडावासी एवं देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपा पांडे तथा कैलाश आमा समूह तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही परिवार।

नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने धार्मिक एवं बौद्धिक जगत आध्यात्मलाई सर्वोपरि ठान्ने हमारा संपूर्ण भक्तजन में सुख शांति समृद्धि र उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। युवा ज्योतिषी आचार्य बद्री प्रसाद भट्टराई, श्री गणेश ज्योतिष तथा वास्तु सेवा केन्द्र तिलोत्मा 5 मडिग्राम रूपन्दे, साथै हामी कहाँ शास्त्रीय विधिमा आधारित रही ग्रह गोचर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, चिना टिप्पण कुण्डलीको निर्माण, घर उद्योग र व्यवसायको वास्तु परामर्श साथै सम्पूर्ण ज्योतिषीय परामर्श प्रदान गरिन्छ। मोबाइल 98619 95107 र 97646 98621। साथै हामी कहाँ अनलाइन मार्फत पनि सेवा प्रदान गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनु हुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष धनेन्द्र पौडेल, झरना स्पोर्ट्स क्लब परिवार, तिलोत्तमा छ कुञ्जला।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर लालमणी भट्टराई, झरना एण्ड तुलसा इंटरप्राइजेज, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही, गिरवाण स्कूल को ठ्याक्कै अगाडि। साथै हामी कहाँ ग्यास सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री पाउनुका साथै किचन का लागि आवश्यक सबै किराना सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामी कहाँ होम डेलिभरी को पनि व्यवस्था छ है। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल 98575 3542 और 98447 1538।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: चेयरमैन बसन्त रोका छेत्री, माउंट एवरेस्ट कथा मिल्स, माउंट एवरेस्ट एग्रोउड तथा माउंट रोजिन टप एंड टाइम किलोतमा 16 पर्सहवा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष हीरालाल खनाल, व्यवस्थापक दिल्लीराज शर्मा, मिलीजुली बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, तिलोत्तमा 8 सूर्यपुरा।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे मिलिचुली क्लब शंकर नगर तिलोत्तमा एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लेखनाथ पराजुली, मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा स्वर जुड़ा।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण सर्जिकल व्यवसायी औषधी विक्रेता आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रोपराइटर सुरेश कुमार न्यौपाने, मेडिकेयर सर्जिकल एण्ड केमिकल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मणिग्राम जर्नल स्टोर्स मणिग्राम चोक रूपन्देही दैनिक उपभोग्य सामग्री को थोक तथा फुटकर विक्रेता हजुर इस मणिग्राम जर्नल स्टोर्स मा विवाह वर्तबन्ध र पार्टी लगायत का शुभ कार्य का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण घरायसी सामग्री सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। सीधा सम्पर्क 071-562-477 र 98-470-59-25।
1: रेडियो लुम्बिनी, रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज शान्तिको आवाज।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर कृष्ण प्रसाद पांडे माछा पुछरे ट्रेडर्स परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम वडा कार्यालय जाने माछा पुछरे पथ सम्पर्क नम्बर 98570042306 साथै हामी कहाँ दैनिक उपभोगका सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै सबै खाले खाद्यान्न सामग्री थोक तथा फुटकर मूल्यमा बेचबिखन गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: बाल शिक्षा में लगानी ल्याउँछ सुन्दर बिहानी अध्यक्ष गोपाल टंडन प्राचार्य विष्णु प्रसाद ढकाल तथा लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूल तिलोत्तमा 13 मधौलिया रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रिंसिपल डीबी थापा लिटिल स्टार बोर्डिंग स्कूल परिवार तिलोत्तमा 16 जुड़ा रूपन्देही। थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 98570।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष जितेन्द्र बौडेल जीतू, प्राचार्य किरण सागर गेवाली तथा लिटिल प्याराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार तेलोतमा सात भलवारी रूपन्दे। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98575 3584।

बीमा गरौं जीवन सबल बनाऊ। नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण बीमाकर्ता अभिकर्ता बीमित परिवार तथा संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। दुर्गा प्रसाद पांडे एजेंसी मैनेजर तथा एलआईसी नेपाल परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, प्राचार्य दीपक खनाल तथा श्री कुंवरवर्ती इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही।

0: तिलोत्तमा नगरपालिकाको फोहर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरूरी सूचना। फोहर मैला संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई दिगो र वैज्ञानिक बनाई वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको प्रमुख सूचकलाई कार्यान्वयन गर्न 2079 चैत्र 1 गतेबाट तिलोत्तमा नगरपालिकामा फोहर मैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गरी कुहिने र नकुहिने फोहर अलग अलग रूपमा संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। साथै अबका दिनमा आफ्नो घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, होटल, रेस्टुरेन्ट, कार्यालय लगायत सम्बद्ध सबै स्थानमा कुहिने र नकुहिने फोहर राख्ने अलग अलग डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुहुन तथा डाइपर, सेनेटरी प्याड तथा सिसाजन्य फोहरलाई छुट्टै झोलामा दिई सोही अनुरूप फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासीमा अनुरोध छ। तोकिए बमोजिमको कार्य नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र मिश्रित फोहर नगरपालिकाले संकलन नगर्ने कुरा पनि सम्पूर्ण नगरवासीमा जानकारी गराइन्छ।
1: अनुरोधक तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मणिग्राम रूपन्देही।
2: नमस्ते है नमस्ते। होइन बुढेसकालमा के कुरामा हो बुढा बुढी गफी तै
3: के हुनु नस्नानी, जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी सासु सासुको मेसो खोज्दै थम क्या।
2: आहा, यो हो नि तरिका सासु ससुराको। हो त, पेटमा बच्चा बसेदेखि दुई वर्षको हुन्जेलसम्मका यी हजार दिनमा आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने र सरसफाइका बारेमा ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
4: लौ, ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले चाहिँ भयो। के गर्नुपर्छ भन्दिउँ त नानी।
2: ल, यो सुन्नु त, रेडियोमा फुकेको फुके हुन्छ त।
5: अनि फलफुल र सागपात, बच्चाको खाना साथ साथ
6: सबै मिलाइ खुवाऊ।
5: कम्तीमा दुई वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाऊ, बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ। हो, मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि 6 महिना पुरा भएपछि आमाको दुधको साथै अन्डा, माछा मासु, हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफुल पनि खुवाए। तपाईँले नि
7: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई दुई पटक थप पुसिलो खाना खुवाऊ।
8: हो, यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी हात सफा राख्ने, खानेकुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने, अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? आईडीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्युट्रिसन परियोजना तथा कृष्णसार एफएम द्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश।
9: नमस्कार हो नमस्कार नाई, यी बुढौती में बुढा बुढी का बात कहिल जाता। अका होई डाक्टर नी बहिनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भाइल भाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के। हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई होई जाले, ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कैल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
10: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन होई गईल। और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दाते।
9: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
11: गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
9: फल फूल और सागपात बच्चा के खाना साथ साथ
10: सब मिल के खियावल जाए,
9: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोस, हरियर सागपात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
10: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे उसे एक जगह बेसी दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज उसे 2 जगह बेसी देवल जाए।
9: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही। बुझलू ने?
10: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही एफएम द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
6: सौ क्यूआर
12: भाई मेसेज आगे
13: घरी एसएमएस आए न

0: ಫೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಘ ಸದೈ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್.
1: ನಯ ಬಸಕೋ ಶುಭ ಕಾಮನಾ.
2: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं.
3: अध्यक्ष हरिप्रसाद पांडे, प्राचार्य डोलराज पांडे तथा विश्व शांति सामुदायिक आधारभूत विद्यालय परिवार तिलोत्तमा नौ नंदनमन रूपन्दे. संपर्क नंबर 9847 30934.

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष होमनाथ पराजुली तथा रूपन्देही विद्युतीय व्यवसायी संघ तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त मन्दिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी महानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्य, सचिव छविन्द्र गिरी तथा श्री बाँसघारी देवी शक्तिपीठ तिलोकमा छ पश्चिम बहुनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर मनोज सेन्चुरी, जय सन्तोषीमा ज्वेलर्स परिवार, सिलुक्तमा 5 मणिग्राम चौक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहनु भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। बहुदलीय बहुजातीय समाजवाद को संरक्षण गरौं, धर्मनिरपेक्षता र संहिता को पूर्ण कार्यान्वयन गरौं। अध्यक्ष झमबहादुर गुरुङ, राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कसजू, आचार्य गोपाल प्रसाद आचार्य तथा होराइजन जीडीएस तिलोत्तमा एक ड्राइवर टुल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: महादेव ऑटोमोबाइल्स होंडा कंपनी को अथोराइज सर्विस सेंटर तिलोत्तमा 5 मणिग्राम पर्वु बैंक को छेवैमा साथ ही हामी कहाँ होंडा बाइक तथा स्कूटर सर्विस गरिनुका साथै होंडा का जेन्युइन पार्ट्सहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 071-591-159 र 98-472-97-159।

0: नया वर्षा को शुभ कामना।
1: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: संचालक रामकृष्ण पौड्याल, हेल्दी स्माइल डेन्टल केयर परिवार, तिलोत्तमा 5 मडीग्राम, रेडियो लुम्बिनी को ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क 071-562-593। साथै हामी कहाँ वरिष्ठ डेन्टल सर्जन द्वारा दाँत मुख तथा गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार र परामर्श सेवा उपलब्ध छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: ज्ञानगंगा पाठशाला परिवार तिलोत्तमा चौर शीतल कुंज रूपन्देही संपर्क नंबर 98570।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य मृगेन्द्र प्रसाद रिजाल, श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय परिवार, तिलोत्तमानौ केउलानी रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 67029।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्थापक प्राचार्य खेमेन्द्र राणा, क्रिस्टल नलेज एकेडेमी परिवार, तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देह।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त सेवाग्राही, संचालक समिति, अस्पताल प्रशासन, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: डाक्टर शेखर पोखरेल, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, क्रिम्सन अस्पताल परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूप।

एपी ट्रेडिंग परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोक देखि 100 मीटर पूर्व। साथ ही हामी कहाँ बिजुली पानी प्लम्बिंग का उच्च स्तरीय सामान तथा सेवा सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 98 5 70 42 8 48।

0: अनि फलफूल र सागपात बच्चाको खाना साथ साथ
1: सबै मिलाई खुवाऊ।
0: कम्तीमा दुई वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाऊ। बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ। हो, मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि 6 महिना पूरा भएपछि आमाको दुधको साथै अन्डा, माछा मासु, हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफूल पनि खुवाए। तपाईँले नि
2: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई दुई पटक थप पोषिलो खाना खुवाऊ।
3: हो, यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी हात सफा राख्ने, खाने कुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? आईडीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्युट्रिसन परियोजना तथा कृष्णसार एफएम द्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश।
4: नमस्कार हो नमस्कार नाई, यी बुढौती में बुढा बुढी का बात कहिल जाता? अका होई डाक्टर नी बहिनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल बाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के। हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद 2 वर्ष के जब तक नाई हो जाले, ई 1000 दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कैल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
5: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गई, और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत।
4: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
6: गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
4: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
5: सब मिल के खियावल जाए।
4: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोश, हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
5: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे, उसे एक जवा बेसी दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज, उसे 2 जवा बेसी देवल जाए।
4: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सकभर धिका के पिए के चाही। बुझलू ने?
5: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही एफएम द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
7: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ।
8: मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौ।
7: मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लियौ।
8: प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनौ।
7: जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ।
8: वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ।
7: ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाऊ।
8: वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनौ। वातावरण संरक्षण गरौ, जीवन रक्षा गरौ। तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कुञ्जलापुर, मणिग्राम, रूपन्देही।
9: गर्ने एउटा थाक्ने जहान, दिनभरि तिमीले के गरेर बस्थ्यौ? 3 दिन भयो कपडा धुन दिएको, आज पनि त्यसै असरल छन्।
10: मैले काम गरेको तपाईँले कहिले पो देख्नु भएको छ र?
11: के को छलफल हो दाई भाउजू? दुवैजना थकित पनि देखिनुहुन्छ।
10: हेर्नुहोस् न बाबु, हुन त घरका कुरा नभने पनि हुने हो। बिहान उठेदेखि घरको सरसफाई, चिया, नास्ता, खाना, बच्चालाई स्कूल, दाईलाई अफिस, भाँडा भान्सा, करेसा बारीको काम, एक मिनट फुर्सद छैन। तर दाईले मेरो कामै देख्नुहुन्न।
11: हुन त हो, घरका काम कति हुन्छन् कति गणना गरी साध्य छैन। अफिसको एक करोड काम भन्दा त घरका काम धेरै गाह्रो छ। आफूले गर्न परेको थाहा हुन्छ, नगरेकालाई कसरी थाहा होस्?
9: ओहो भाइ, आज तिमीले साँच्चै मेरो आँखा खोलिदियौ। घरमा कम काम हुन्छ म बल्ल बुझे भाइ।
6: एक अर्काको कामको सम्मान गरौ, समाज परिवर्तनमा अग्रसर बनौ।

0: सामाजिक सञ्जाल लगायत अनलाइनमा हुने मिथ्या समाचार दुष्प्रचार र घृणा जन्य अभिव्यक्ति कानूनी रूपमा दण्डनीय छ। अनलाइन हिंसा नगरौं र नसहौं।
1: नयाँ वर्षको शुभकामना।
2: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण सियर सदस्य, संचालक समिति, सल्लाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: सहकारीमा खाता खोलौ, बचत गर्ने बानी बसालौ। अध्यक्ष डीबी थापा, व्यवस्थापक लक्ष्मण काउसा तथा टुंगा आस्था विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, ओम सोतिया एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष कृष्ण रसाईले तिलुत्तमा सुनसादी व्यवसाय संघ तिलुत्तमा एक ड्राइवर टूल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: स्कूल तथा कैंपस ड्रेस को विश्वसनीय पसल उपहार में नया वर्ष को बहार प्रोपराइटर पारस पौडेल तथा दामोदर पौडेल उपहार साड़ी सेन्टर तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही साथ ही हामी कहाँ विभिन्न प्रकार का साड़ी कुर्ता सलवार शॉटिंग सुटिंग स्कूल बोर्डिंग र कैंपस का ड्रेसहरू तथा स्कूल र कलेज का ब्यागहरू सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क

0: हम उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य शंकर दत्त उपाध्याय, श्री टिकुलीगढ़ माध्यमिक विद्यालय, तिलोत्तमा 14, टिकुलीगढ़ रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष शकुन्तला सुनारी मगर, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, करैया मंगलापुर परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर प्रकाश कार्की, साना किसान दुग्ध बिक्री केन्द्र तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोक रूपन्दे। साथ ही हामी कहाँ शुद्ध ताजा पनीर, घिउ, दूध, दही, नौनी एवं कुल्फी का विभिन्न आइटमहरू सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9872728157।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीजनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष गोपाल रामदाम, रूपन्देही सुनचाँदी व्यवसायी संघ परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण रिसन में आबद्ध विद्यालय विद्यार्थी पदाधिकारी बुद्धिजीवी एवं संपूर्ण जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष फूल बहादुर सरांगोटी पवन रूपन्देही एकीकृत विद्यालय संगठन परिवार रिसन रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राजेन्द्र कुंवर, डाकुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, सिलोतमा एक ड्राइभर टोल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: इंजीनियर दुजेन्द्र कुमार बस्नेत सनराइज इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्सी परिवार तुलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही रेडियो लुमिनी भएको भवनमा।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सचिव अरविंद पांडे, अध्यक्ष संतोष कुमार शेरचन्न तथा श्री सिद्ध बाबा मंदिर विकास समिति परिवार तीनाउतीन दोभान।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर सूरज लोहागुन, श्री कैश आभूषण सुन चाँदी पसल, सिलोतमा 5 प्रेम भवन सटर लाइन। हामी कहाँ सुन चाँदी का अत्याधुनिक डिजाइन का 24 क्यारेट का रेडीमेड गरगहना पाउनु का साथै अर्डर अनुसार का गरगहना सुपथ मूल्य में बनाइन्छ। सीधा सम्पर्क 98570 60790।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्यारामाउंट बोर्डिंग हाई स्कूल तुलसमा एक नया मिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पामीर इंटरनेशनल एकेडमी परिवार तिलोत्तमा 2 जानकी नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 9857039848।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संसार गोकर्ण खड्का आरबी इटा उद्योग हजुर आरबी इटा उद्योग द्वारा निर्माण गरिएका नम्बर वन ब्रांड का गुणस्तरीय इटाहरू सदैव प्रयोग गरौ। सीधा संपर्क 9857778373।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहनु भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष रोस्तम कडेल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा, तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष क्षेमेन्द्र राणा, श्री राम जानकी शिव मंदिर परिवार, तिलोत्तमा 9 कुटी, मंगलापुर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सुख का गहना दुख का खजाना यसपाली को नया वर्ष राधाकृष्ण सुनचादी पसल में प्रोप्राइटर पुरुषोत्तम सुनार श्री राधाकृष्ण सुनचादी पसल मणिग्राम चौक देखि 50 मीटर पश्चिम हामी कहाँ नया तथा आकर्षक डिजाइन का गर गहना पाउनु का साथ ही पुराना संग नया साठ फेर पनि गरिन्छ। थप जानकारी का लागि संपर्क मोबाइल 9862750556 र 9843773899।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त सेवाग्राही, संचालक समिति, अस्पताल प्रशासन, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोपराइटर जवाहरलाल न्यौपाने, पूजा मेडिकल हल, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही, सम्पर्क नम्बर 98570।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष अर्चित श्रेष्ठ, प्राचार्य वेद नारायण भट्टराई तथा श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्दे
2: हामीले खुसी।

0: फोन पॉइंट सँग सधैं रिवार्डेड।
1: ओए साथी हेर न, क्या खतरा समाचार आइसक्यो। बाफ्रे, अब चाहिँ के हुने हो।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन रूपन्देही में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक संस्था, बौद्धिक वर्ग एवं शैक्षिक व्यक्तित्वहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपक खनाल, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन परिवार रूपन्देही।
2: बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ भन्छन्, तर उमेर चाहिँ नफर्किने रहेछ। गयो त गयो।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य दिनेश भूषाल एवं प्राध्यापक सुमन भूषाल अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुसुल 8 सुखानगर रूपन्देही परिवार

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक रामप्रसाद ढकाल, नेता पोलिक्लिनिक प्राली परिवार, तिलोत्तमा 5 मडिग्राम, रेडियो लुमिनी को ठैक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 0175268323।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त आमा बुबा दाजुभाई एवं दीदी बहिनीहरुमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइन में सुन र चाँदी का गहना ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। पालपाली सखी सुन चाँदी पसल तिलोत्तमा 5 मणिग्राम बजार प्रोप्राइटर सूरज सविता गहतराज। सम्पर्क नम्बर 071-5562-914 मोबाइल नम्बर 98470-77-77 र 98470-58-627।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष राजेश कुमार कसौदन, महासचिव भूपराज अर्याल तथा पश्चिमांचल टैंकर व्यवसायी संघ परिवार तिलोत्तमा साथ भलबारी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्लम्बर सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप सधैंको भरोसा आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुमिनी बिजनेस प्राली योगीकुटी बुटवल साथै हामी कहाँ प्लम्बर ब्रांड का सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप पाउनुका साथै स्टील प्लास्टिक टंकी र धारा सेट उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 42583 र 98570 42483।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: न्यू इन्भायरमेन्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तुलुतुमा 5 मणिग्राम रूपन्देही मोबाइल 98570 26294।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नवज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98 4 70 26 8

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: खेल खेलाऊ स्वस्थ बनाऊ
2: अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने तथा नवजीवन क्लब परिवार सिलोतमा 10 नम्बर रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा सम्पूर्ण संचालक समिति, ल्याब प्रशासन, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेशनल प्याथ ल्याब परिवार।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर कृष्ण प्रसाद पांडे, माछा पुछरे ट्रेडर्स परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम वडा कार्यालय जाने माछा पुछरे पथ, सम्पर्क नम्बर 9857042306। साथै हामी कहाँ दैनिक उपभोगका सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै सबै खाले खाद्यान्न सामग्री थोक तथा फुटकर मूल्यमा बेचबिखन गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बाल शिक्षा में लगानी ल्याउँछ सुन्दर बिहानी अध्यक्ष गोपाल टण्डन प्राचार्य विष्णु प्रसाद ढकाल तथा लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूल तिलोत्तमा 13 मधौलिया रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हीरालाल खनाल, व्यवस्थापक दिल्लीराज शर्मा, मिलीजुली बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, तिलोत्तमा 8।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनु हुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे मिलिचुली क्लब शंकर नगर तिलोत्तमा एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष लेखनाथ पराजुली, मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा 16 जुड़ा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण सर्जिकल व्यवसायी औषधी विक्रेता आमा बुबा दाजु भाई तथा दीदी बहनी सबै में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रोपराइटर सुरेश कुमार न्यौपाने, मेडिकेयर सर्जिकल एण्ड केमिकल भुटोल।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: मणिग्राम जर्नल स्टोर मणिग्राम चोक रूपन्देही दैनिक उपभोग्य सामग्री को थोक तथा फुटकर विक्रेता हजुर इस मणिग्राम जर्नल स्टोर में विवाह व्रतबन्ध र पार्टी लगायत का शुभ कार्य का लागि आवश्यक पर्ने संपूर्ण घरायसी सामग्री सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। सीधा संपर्क 071-562-477 र 98-470-5925।

0: नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण उपभोक्ता इस खाने पानी संस्था में आबद्ध पदाधिकारी शुभेच्छुक तथा देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: साथै आफ्नो टोलबाट सम्पूर्ण उपभोक्ता टोलवासी आमा समूहले तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने बमोजिम सरसफाई कार्यक्रममा जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। स्थान
0: परैया खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था तिलोत्तमा सात जहदा दलका भलवारी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त वन का पदाधिकारी कर्मचारी संचालक समिति सलाहकार लगायत देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष हरिलाल पाण्डे, उपाध्यक्ष बाबुराम खरेल तथा करैया सामुदायिक वन परिवार किलोतमा 8 रूपन्दे।
1: शांति को आवाज रेडियो लुम्बिनी।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त इस आमा समूह में आबद्ध महिला दीदी बहनी शुभेच्छु को वड़ावासी एवं देश विदेश में रहन हुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपा पांडे तथा कैलाश आमा समूह तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्राचार्य दिलबहादुर थापा तथा अध्यक्ष सूरज थापा श्री ज्योति आधारभूत विद्यालय कुलोत्तमा 8 ज्योति नगर 4 नंबर चौक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रिन्सिपल डीबी थापा लिटिल स्टार बोर्डिंग स्कूल परिवार तिलोत्तमा 16 जुडा रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98570 26315।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष जितेन्द्र बौडेल जीतू, प्राचार्य किरण सागर गेवाली तथा लिटिल प्याराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार तेलोतना सात भलवारी रूपन्दे। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98575 3584।

बीमा गरौं जीवन सबल बनाऊ। नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण बीमाकर्ता अभिकर्ता बीमित परिवार तथा संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। दुर्गा प्रसाद पांडे एजेंसी मैनेजर तथा एलआईसी नेपाल परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, प्राचार्य दीपक खनाल तथा श्री कुंवरवर्ती इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेय, प्राचार्य डोलराज पाण्डेय तथा विश्व शांति सामुदायिक आधारभूत विद्यालय परिवार तिलोत्तमा 9 नन्दनमन रूपन्देही। सम्पर्क नम्बर 98470 3934।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष होमनाथ पराजुली तथा रूपन्देही विद्युतीय व्यवसायी संघ तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य मृगेन्द्र प्रसाद रिजाल, श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय परिवार, तिलोत्तमानौ केउलानी, रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570-67-029।
2: शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक समीर रिजाल तथा किशन केसी, फेमस आल्मुनियम एण्ड स्टील इंजीनियरिंग ग्लास हाउस परिवार, तिलोत्तमा 9 शंकरपुर रूपन्दे। साथै हामी कहाँ आल्मुनियम को झ्याल ढोका, अफिस डेकोरेशन, पार्टेशन, कर्टेन वाल तथा सीसा फन ग्लास एवं स्टील सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सुपथ मूल्यमा गरिन्छ।
2: साथै यहाँ यूपीबीसी का झ्याल ढोका सम्बन्धी कामहरू पनि गरिन्छ।
1: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98570 1502 र 98570 42708।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: डन मोडल एकेडेमी परिवार 3-5-6 नयामिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष बाबुराम देवकोटा ध्रुवतारा युवा क्लब तिलोत्तमा 1, 5 र 9 को संगम प्रेमनगर रूपन्देही समाज सेवामा सदैव अग्रणी ध्रुवतारा युवा क्लब।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्मा तथा धौलागिरी मल्टी स्पेशलिटी डेन्टल क्लिनिक परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्दे साथै विगत 15 वर्षदेखि मणिग्राम क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट सेवा दिन सफल वरिष्ठ डेन्टल सर्जन डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्माद्वारा दाँत मुख र गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार गरिन्छ। साथै हामी कहाँ इम्प्लान्ट एवं अर्थोडेन्टिक सेवा पनि उपलब्ध छ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मैनेजिंग डाइरेक्टर प्रकाश थापा तथा देव पाइप इंडस्ट्रीज प्राली तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: संस्थापक प्राचार्य क्षेमेन्द्र राणा, क्रिस्टल नलेज एकेडेमी परिवार, तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देह।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: डाक्टर शेखर पोखरेल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट क्रिम्सन अस्पताल परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: यस क्षेत्रकै सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक संस्था ब्रिटिश ग्रामर स्कूल रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष शिवप्रसाद भट्टराई, प्राचार्य दीपक गौतम तथा एपेक्स स्कूल परिवार तिलोत्तमा एक शंकरनगर रूपन्देही।
1: यति बेला रातिको

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: भारती मार्बल्स परिवार तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देही साथै हामी कहाँ टायल ग्रेनाइट पाइप फिटिंग बेसिन धारा आइटम एवं कम्बोर्ड लगायत का सामग्री सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98575225।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीनानाथ ढकाल, आनंदवन मधुबन सहकारी संस्था लिमिटेड, चुलुत्तमा 12 नंबर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त मन्दिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी महानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्य, सचिव छविन्द्र गिरी तथा श्री बासघारी देवी शक्तिपीठ।
1: यति बेला रातिको